0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास।
2: चांदनी

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: We are the sounds of the streets.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: Cool Song.

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

के लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

ऑफकोर्स जी, मेरे फोन में किसी की भी फोटो हो मम्मी जरूर पूछती है कि ये कौन है, लेकिन ऐसे मौके आजकल उन्हें बहुत कम मिलते हैं क्योंकि मेरी फोन में सिर्फ मेरी ही फोटो ज्यादा हो गई है। ये छोरी कशिश, कशिश। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है आ गई है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आपकी दिन की शुरुआत जो है, आपकी सुबह की शुरुआत बहुत ही हैपनिंग हुई होगी। एंड इस एनर्जेटिक ट्रैक के साथ मैंने जो है अपनी वाइब को सेट करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए यार, आज जो है वो वेंसडे का दिन है, 7 अक्टूबर है, 6:00 इस वक्त 6 मिनट हो रहे हैं। एंड मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि यार वेंसडेज आर हैप्पी, क्योंकि आप एकदम मिड में हो, आपने आधा हफ्ता काम कर लिया है, आधा हफ्ता और बचा है, लेकिन आधे हफ्ते में हमारे लिए बेसिकली जिन इंडिया में या कहीं और संडेज को छुट्टी होती है तो उनके लिए वेंसडे जो है काफ़ी हैवी होता है, लेकिन हमें बस ये मोटिवेशन है कि आज का दिन निकल जाए फिर बस कल तो जो है वीकेंड वाले मोड में हम ऑलरेडी चले जाएंगे। कल जो है सेकेंड हाफ के बाद काम ही नहीं होगा, जो होगा वो वीकेंड के बाद होगा, अब संडे को आना। सो फिलहाल जो है इस पर और ज़्यादा रोशनी डालेंगे, आज के मौसम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं जैसे ही उठी मुझे कुछ खास देखने को मिला। सो फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ बिंदास मॉर्निंग में इंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास। गाने का नाम है चांद, एंजॉय कीजिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर। गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
1: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स।
0: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: ससिकाल जी, मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम जियो बिंदास।

0: बिंदास सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: कटी बटी मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। ये छोरी कशिश, हाँ जी आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है, कूल सी छोरी आ चुकी है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर। गुड मॉर्निंग। अब देखिए यार, मैं जो है आज जैसे ही उठी मैंने अपनी रूम की खिड़की खोली एंड मैंने देखी धुंध। हाँ जी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी बारिश हुई है एंड मेरी खिड़की पे जो है एक धुंधली सी लेयर जो है वो जमी हुई थी। मुझे लगा कि क्या ही हो सकता है, शायद बारिश हुई हो बाहर। तैयार होगी मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकली हूँ, मुझे मौसम में एक चेंज जो है वो महसूस हुआ। हल्की हल्की सी ह्यूमिडिटी सी फील हो रही थी, हल्की सी ठंडक भी थी। सो ह्यूमिडिटी प्लस ठंडक फील हो रही थी एंड मेरी कलीग्स जो मेरे साथ आए उन्होंने मुझे बताया कि यार कशिश ऐसा तब होता है जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने वाली होती है, तो आज आप जो है दिन में ह्यूमिडिटी के लिए तैयार हो जाइए। हाँ कोई बात नहीं गाइज, लेकिन मैं जो है ह्यूमिडिटी की बात सुन के बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हाईएस्ट टेम्परेचर आज का दिख रहा है जो कि काफ़ी कम हो गया है कल से। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, लोएस्ट टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड इस वक्त का टेम्परेचर दोहा में हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो कंपेरेटिवली देखिए 40 डिग्री था हाईएस्ट टेम्परेचर, अब 37 पे आ गया है, तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ऐसे डिक्रीज होता रहेगा। बाकी आपका इस मौसम के बारे में क्या प्रिडिक्शन है, और आप लोगों को इतना टाइम हो गया है कतर में, तो थोड़ा इस नए इंसान को थोड़ा समझाइए, बताइए कि कब से जो है मैं अपने बूट्स पहनना शुरू कर सकती हूँ। फिलहाल कुल संग अब दिया रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए ओ मेरे दिल के चैन वाले गाने को, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल संग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

वाला ही गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को मैं बिंदास बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, वक्त हो गया है आज के थॉट ऑफ द डे का, कोट ऑफ द डे का। बाप रे, इतना मैंने एक्साइटमेंट में बोल दिया कि खांसी ही आ गई मुझे। वैसे देखिए यार, अगर मैं बात करूँ ना कोट ऑफ द डे की, तो जिस बारे में हमने कल बात करी थी, आज का कोट भी कहीं ना कहीं वही सजेस्ट करता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो पूरा यूनिवर्स है वो हमें यही जो है बताने की कोशिश कर रहा है कि यार सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज का कोट है, यू आर कन्फाइंड ओनली बाय द वॉल्स यू बिल्ड फॉर योर सेल्फ। एग्जैक्टली। सो देखिए यार, आपको रोकने की ताकत जो है इस दुनिया में किसी की नहीं है। कोई इंसान जो है आपको रोक नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल आप रुकना नहीं चाहते कुछ करने से। मतलब आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि यार बस ये जो मेरे आसपास के लोग हैं ना, ये मुझे रोकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। रोकते आप खुद को हैं, वो नहीं आपको रोक रहे हैं। सो देखिए, बस इसी बात के साथ मुझे ऐसा लगता है कि यही हकीकत जो है और बस तू ही हकीकत वाला गाना हमें इंजॉय कर लेना चाहिए। मैं हूँ आपकी कल, थोड़ी सी देर में आप सबके मैसेजेस जो है वो पढ़ेंगे, तो मुझे हाय हेलो गुड मॉर्निंग कर दो, मेरी जो आधी अधूरी खुली हुई नींद है उसे पूरी तरीके से खोल दो। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से फोन उठाओ एंड मुझे मैसेज कर दो। बाकी तू ही हकीकत गाना जो है बहुत ही खूबसूरत सा है, आर आपके रेडियो सेट पर जावेद अली की आवाज में। सो स्टे ट्यून्ड और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: सलमान भाई बिल्कुल सिंगिंग भी कर ली इन्होंने, एक्टिंग भी कर ली, राइटिंग भी कर ली, कुछ नहीं बचा जो इन्होंने छोड़ा हो।
1: ये छोरी कशिश।
0: And good morning, 106.3 Radio Oliver. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बना रही हूँ मैं। एंड जुल्फी जी ने जो है हमें मैसेज कर दिया, देयर इज अ ट्रेमेंडस पावर एंड ब्यूटी इन होप, ऑलवेज कीप योर ड्रीम्स अलाइव, नेवर गिव अप ऑन होप। थैंक यू सो मच जुल्फी जी, मैं तो बस यही होप कर रही हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें एंड मुझे इसी तरीके से मैसेज करते रहें। हमें जो है इदरीस जी ने भी जो है बहुत ही खूबसूरत फोटोज जो है वो भेजी है। एंड इदरीस जी, आपकी जो है ना फोटोग्राफी स्किल्स जो है वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। शशिकांत पाटिल जी ने भी एक बहुत ही प्यारा कोट भेजा है, द रिवर नेवर आर्ग्यूज विद द रॉक्स, ये उन्होंने कल भेजा था, ठीक है मैंने कल वाला ही पढ़ लिया, बट या उन्होंने आज जो है वो बहुत ही खास मैसेज भेजा है। एंड उसमें जो है बहुत ही प्यारा सा पर्पल कलर का फ्लावर बना है एंड उस पर लिखा है वेक अप ईच डे एंड बी थैंकफुल फॉर लाइफ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। एंड शशिकांत पाटिल जी, आपके कोड्स भी धीरे धीरे बेटर होते रह जा रहे हैं। अबरार जी ने भी एक बहुत ही खूबसूरत सी गुड मॉर्निंग इमेज भेजी है एंड थैंक यू सो मच आप सब जो है इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस जो भेज रहे हैं। एक और मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग एंड आई होप टुडे ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड वंडरफुल थिंग्स, थैंक यू सो मच। अब देखिए यार, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ्रेश फील हो रहा है, तो आप सबको भी फ्रेश फील होना चाहिए, इसीलिए उड़ चले गाना जो है मैं आपको सुना रही हूँ। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ही गाना इंजॉय कीजिए, उसके बाद जो है ब्लैक बोर्ड स्टोरी में आज का इजी सा जीके वाला सवाल मैं आपसे पूछूंगी। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

हाँ जी, देखिए एक अमेजिंग वाला गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर आपकी कशिश के साथ। ये छोरी कशिश, हाँ जी, आपकी एक कूल सी छोरी कशिश जो है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई है, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, आप सबके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज का सवाल जो है वो थोड़ा आसान सा जो है वो हमें करना चाहिए। तो बस आपको जो है मुझे हमारे कतर के जो है 83 म्यूजियम्स के नाम बताने, बस तो जल्दी से 3311063 इस नंबर पर जो है मुझे मैसेज कर दीजिए अपने नाम के साथ और किसी भी तीन म्यूजियम के नाम जो है वो आपको मुझे बताने। सो सुदेव के स्टाइल में बस यही कहना चाहूंगी कि आज देखते हैं कि आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कशिश थे कितने ज्यादा स्मार्ट है। फिलहाल जो है एक अमेजिंग वाला गाना वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय कीजिए एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।
3: लैला लैला लैला लैला लैला लैला जाल तेरा लैला।

0: अकेली ले लगाना, आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश,
1: ये छोरी कशिश,
0: आपकी कूल सी छोरी कशिश, जो है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई है, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, आप सबसे आज मैंने यही पूछा था कि यार हमारे कतर के किन्हीं 3 म्यूजियम्स की मुझे जो है नाम बता दीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं। योगिनी जी ने आंसर दिया है, इदरीस जी ने आंसर दिया है, एंड और भी बहुत सारे मैसेजेस आए, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं एक और मौका देना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने हमें अभी अभी सुनना शुरू किया है। सो 3311063 पर आज की ब्लैक बोर्ड स्टोरी का सवाल यही है कि हमारे कतर के किन्हीं 3 म्यूजियम्स का नाम आप बताइए। अभी इतने सारे म्यूजियम्स हैं यार, ईजी है, सब में म्यूजियम आता है और बस आर्ट लगाना है। तो अब इतना हिंट जो है काफी है, जल्दी से 3311063 पर मुझे मैसेज कर दीजिए। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपकी रेडियो सेट्स पर, फिलहाल जबरदस्त हिट एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ
2: फुटवेयर गारमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स सब पर मैसिव सेविंग्स
1: क्लॉक इज टिकिंग ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक डोंट जस्ट शॉप स्कोर बिग आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
6: इन एसोसिएशन विद
5: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

और क्या कहूँ मैं यार, आपके बिना अधूरी अधूरी सी तो हूँ। आप लोगों के मैसेजेस नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि सुबह हुई ही नहीं है। आसपास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन बची ही नहीं है। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिवर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपकी कूल सी छोरी जो है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये सवाल किया था कि यार मुझे जरा हमारे कतर के सारे म्यूजियम्स की लिस्ट दे दीजिए। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। आयशा जी बिल्कुल सही आंसर दिया है, योगिनी जी बिल्कुल सही आंसर दिया है, इदरीस जी आप मुझे बस इसीलिए और ज़्यादा पसंद हो क्योंकि आपसे जब भी मैं कोई सवाल पूछती हूँ आप मुझे एक फ़ोटो भेज देते हो। बस इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो वो बस आपकी भेजी हुई फ़ोटोज़ लग रही है। एंड आपकी स्किल्स धीरे धीरे बेटर होती जा रही हैं, बट नेक्स्ट टाइम से कोशिश कीजिएगा कि मुझे बर्ड्स की फ़ोटो ना भेजें, मुझे

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold Golden Diamonds.
2: Malabar Golden

0: डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

हाँ जी, आंख मारे यार। देखो मेरी ना एक प्रॉब्लम है, मुझसे ना जब भी मैं ऐसे विंक करने की कोशिश करती हूँ मैं ब्लिंक कर जाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता ये छोरी। तो इस गाने का स्टेप मुझसे कभी हो नहीं पाया। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो जो है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, हम आते हैं और हर रोज जो है कुछ खास बात करते हैं, फैशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टर्म देना चाहती हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे ही करोगे, एंड वो है डोपामीन ड्रेसिंग। यानी थोड़ा हटके, थोड़ा अतरंगी, थोड़े चटपटे बेसिकली कपड़ों में, कलर्स में जो है ड्रेस करना। एंड अगर मैं कतर की बात करूँ तो मुझे जो है कुछ कुछ एरियाज में ये चटपटे ड्रेसिंग वाले लोग जो है वो दिख ही जाते हैं। अब आप मुझे गेस करके बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा चटपटी ड्रेसिंग जो है वो कर रहे हैं। बाकी डोपामीन ड्रेसिंग के बारे में हम जो है थोड़ी सी देर में डिटेल में बात करेंगे, एंड हम जो है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात करने वाले हैं जो आपको जीतने का मौका दे। यस, हमारी जो ए हालो धूम वाली अमेजिंग डांस नाइट होने वाली है उसके कपल टिकट्स जीतने का आपको मौका मिलने वाला है। सो जल्दी से पहले तो वॉल्यूम बढ़ाकर एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7700525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: Mom, see what I bought today. I bought a tomato plant, a lemon plant, and a mango plant.
4: A mango plant? Isn't that a mango tree? Anyway, why is everything so green? Where did you get all this?
5: Arey, we went shopping at Safari, didn't we? Safari has launched the Go Green, Grow Green promotion. He got really excited when he saw all the plants and arrangements there.
3: Yeah, it's so cool, Mom. There's a lot of flowering plants too. I picked out the best ones.
5: He selected each one himself. There are plenty more. We can go together sometime.
6: A wide variety of vegetable and fruit saplings, medicinal and ornamental plants, indoor plants, various seeds, plus garden tools, fertilizers, and everything else needed for gardening. All arranged at Safari starting October 5th as part of the Go Green, Grow Green campaign.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

मतलब 2022 या 2021 की बात है, मुझे और मेरे भाई को ना मोबाइल पे फोन पे जो है गेम्स खेलने का काफी एडिक्शन हो गया था। मेरी मम्मी कहती थी कि क्या मिलेगा ये गेम्स खेल के। मम्मी अगर उस टाइम पे गेम्स खेले होते ना तो अभी हमारे पास भी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिस पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, मैं जो है आपको बताना चाहती हूँ कि खबर जो है इंडिया से आ रही है कि एक 19 ईयर के मतलब टीनेजर ने जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कैंडी क्रश खेलने में। हाँ जी, ये कैंडी क्रश के लेवल 22,222 पर पहुंच चुके हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। तो कैंडी क्रश ने जो है इन्हें सम्मानित किया है और इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है होल्डर का खिताब दिया है कि भाई इतना अच्छा कैंडी क्रश आपने कैसे ही खेला। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो कैंडी क्रश खेलते रहते हैं एंड ऐसे बहुत सारे गेम्स खेलते रहते हैं एंड वो फ्लेक्स भी करते हैं, ओ हम 2000 लेवल पे हैं, हम 8000 लेवल पे, हम 18000 लेवल पे। लेकिन भाई इन भाई ने तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि कैंडी क्रश खेलने के अलावा पूरी दुनिया में मतलब और सारे कामों को टाटा बाय बाय बोल दिया होगा। ये भी कहते होंगे ना कि यार कैंडी क्रश खेलने में क्या मजा आ रहा है ना। फिलहाल क्या मजा आ रहा है वाला गाना जो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो पहले तो ये गाना एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर, उसके बाद जो है बातचीत जारी रखेंगे हम डोपामाइन ड्रेसिंग पे। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Mom, see what I bought today. I bought a tomato plant, a lemon plant, and a mango plant.
2: A mango plant? Isn't that a mango tree? Anyway, why is everything so green? Where did you get all this?
3: Arey, we went shopping at Safari, didn't we? Safari has launched the Go Green, Grow Green promotion. He got really excited when he saw all the plants and arrangements there.
1: Yeah, it's so cool, Mom. There's a lot of flowering plants too. I picked out the best ones.
3: He selected each one himself. There are plenty more. We can go together sometime.
4: A wide variety of vegetable and fruit saplings, medicinal and ornamental plants, indoor plants, various seeds, plus garden tools, fertilizers and everything else needed for gardening. All arranged at Safari starting October 5th as part of the Go Green, Grow Green campaign.
5: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
6: हाय गाइस, दिस इज जुरिता गांधी। यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो जियो बिंदा।
7: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
8: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
9: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
10: इन एसोसिएशन विद
9: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
2: कूल सॉन्ग।

0: इसकी प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट, और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

क्या दास्ता सुनाऊं मैं आपको उस एक लड़की की जो हर रोज सुबह चटपटे कलर के एकदम चड़ाक कलर के कपड़े पहनकर सुबह सुबह यानी 6 बजे जो है एकदम तैयार होके अपने ऑफिस आ जाती है एंड एक माइक के थ्रू लोगों से बातचीत करती है। जी कूल तो है वो छोरी और उस छोरी का नाम है आपकी कशिश एंड इसे कहते हैं डोपामाइन ड्रेसिंग यानी उस कलर्स में तैयार होना जो आपको काफी पसंद है। एंड मैं इस पर काफी बार पहले भी बात कर चुकी हूँ लेकिन अभी किसी ने जो है थोड़े दिन पहले जो है मुझे मैसेज में पूछा था कि यार कशिश ये डोपामाइन ड्रेसिंग जेंजीज काफी यूज कर रहे हैं एक बार बताओ तो जरा ये है क्या। सो मैंने सोचा कि आज फिर से इसका जिक्र कर देती हूँ इसीलिए मैंने आज डोपामाइन ड्रेसिंग की बात करी। वैसे जेंजीज की बात करते हुए मुझे एक रिसर्च जो है वो याद आ रहा है अभी कुछ दिन पहले ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रोल कर रही थी ऑफ कोर्स एंड वहां पर स्क्रॉल करते करते मुझे जो है ये एक रिसर्च मिली जहां पे ये पता चला कि आजकल जेंजीज जो है वो खर्चा कर रहे हैं टॉयज खरीदने में। हाँ जी खिलौने खरीदने में यानी वो खिलौने जो उनके मम्मी पापा उन्हें मना

जो अभी जो है कॉलेज में है या स्कूल में है, लेकिन अब रियलिटी जो है आपको हिट करने वाली है, क्योंकि जेंजी कॉर्पोरेट में इंटर कर चुके हैं, जेंजी की शादी हो रही है, जेंजी के बच्चे हो रहे हैं, एंड जेंजी जो है अब सिर्फ यू नो कॉलेज या स्कूल का पार्ट नहीं रह गए हैं. सो जेंजी अपना बचपन जो है रिलिव करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको पता नहीं यार, आप जानते नहीं, बस इसीलिए इसी फीलिंग को डिपिक्ट करते हुए तू जाने ना गाना जो है यार आपकी रेडियो सेट्स पर. जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना जो है इंजॉय कीजिए. बाकी थोड़ी सी देर में आपको ऑलिव अपडेट्स में सारी जितनी भी अपडेट्स आपकी आज दिन को हैपनिंग बनाने के लिए जरूरी है वो सब आपको मिलेगी. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: क्यों घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में फास्ट इजी और रिलायबल विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैश बैक विजिट बीमा.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

यार ये वाले गाने सुनती हूँ और ऐसा लगता है कि रेडियो पे अचानक से किसी ने ना इंस्टाग्राम खोल दिया है और अचानक से सारे वायरल गाने एक के बाद ही गाने लग गए हैं। मैं हूँ आपकी कजिन और शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग। जी आपकी कुल सी छोरी कशिश जो है आ गई आपके लिए लेकर सबसे अमेजिंग कॉन्टेस्ट, जहां पर आपके पास मौका है जीतने का एक कपल टिकट टू आर इवेंट ए हालो धूम, जो इस फ्राइडे को होने वाला है 6:30 बजे से, जहां पर बहुत फन होने वाला है, बहुत सारा डांस होने वाला है, बहुत सारा यू नो म्यूजिक होने वाला है, चटपटा स्ट्रीट फूड भी होने वाला है एंड आपको वहां पे जो है एंट्री करने का मौका मिल रहा है। यू तो अगर आप लोग जो है अपनी फैमिली के लिए और टिकट्स लेना चाहते हैं तो आप जो है स्नूनू पे जाकर टिकट्स खरीद सकते हैं, वहां पे बुक कर सकते हैं एंड बाकी आज आपको मैं मौका भी दे रही हूं जीतने का। सो देखिए बस आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, आपको बस एक गाना मैं सुनाऊंगी और वो पहचान कर आपको बस मुझे बताना है कि ये जो गाना ये कौन सी मूवी का है। सो जरा कान लगाकर और ध्यान लगाकर ये गाना सुनो और बताओ मुझे।

0: सुन तो लिया गाना, पहचान भी लिया, तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ 3311063 पर कि आखिर ये जो गाना है ये कौन सी मूवी का गाना है। एकदम फेस्टिव वाइब जो है इस गाने से आ जाती है, ऐसे लगता है अक्टूबर और नवंबर में तो ये गाना बहता रहता है। सो जल्दी से मुझे 3311063 पर मैसेज करके बता दो एंड अमेजिंग वाले कपल पासेस जो है इस इवेंट के जी जाओ।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
3: हाय, मैं राजकुमार राव।
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: देखिए जी, बिल्कुल सही। जो हाल उधर हो रहा है वही हाल इधर भी हो रहा है, क्योंकि फेस्टिव सीजन आते ही पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग जाता है कि यार कुछ करना है, फन करना है, डांस करना है, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कूजी छोरी कशिश एंड आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एंड यहाँ पर हम सब जो है एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे, जहाँ पर आपके पास मौका है ए हालो धूम इवेंट के जो है पासेस जीतने का। एंड मैं क्लियर करना चाहती हूँ खुद को, कपल टिकट्स जीतने का, जहाँ पर बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती और मज़ा जो है वो होने वाला है। एंड आपको जो है इशिता विश्वकर्मा, जो बॉलीवुड सेंसेशन बनी हुई है इस वक्त, उनका लाइव म्यूजिक जो है वो भी सुनने को मिलने वाला है ना। हम आरजे से मिलने का मौका तो देखो मिलेगा ही। तो हमारे साथ फन करने के लिए जो है आपको अगर टिकट्स जीतनी है, सो आपको बस जो है ये जो गाना मैंने आपको सुनाया था ये पहचानना था। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, लेकिन आप लोगों को फिर से मौका दे देती हूँ, जरा कानों ध्यान लगाकर सुनो। तो अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो 3311063 पर आकर मुझे ये बता दो कि ये जो गाना है कौन सी मूवी का है। बाकी हमारे आंसर्स जो है वो जान लेते हैं कि क्या क्या कहा है सब लोगों ने। सो विनायक जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। डोमिनिक जी ने जो है हाय कशिश जी लिखा है, हाय डोमिनिक जी कैसे हैं आप। नेहा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आसिफ जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हकुना मटाचा, ये कैसा नाम है? अच्छा, ओ पल्लव शर्मा जी ने अपना व्हाट्सएप पे नाम ये रखा हुआ है। सो पल्लव शर्मा जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद संगीता जी ने गुड मॉर्निंग कशिश कहा है एंड उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही सही आंसर दिया है। आप लोगों के पास भी अभी मौका है, आप लोग अभी भी सही आंसर दे सकते हो एंड क्या पता आज आप हमारे लकी वाले विनर बन जाओ। बाकी आप लोग जो है सुनू से जाकर अपने टिकट्स बुक कर सकते हो, जो भी जीत नहीं पा रहा है वो और हमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड देखो यार, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब आपको ऐसा इवेंट जो है वो कतर में देखने को मिलता है। सो जल्दी से आओ, मैसेज करो आंसर से, शायद आप जीत जाओ, वरना यार सुनू पे जाकर आप अपने टिकट जो है वो बुक कर सकते हो। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल जबरदस्त हिट गाना जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

हेलो धूम फेस्टिव फ्यूजन नाइट, जहां पर बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती और मजा होने वाला है। और बॉलीवुड सेंसेशन इशिता विश्वकर्मा जो है वो भी ज्वाइन करने वाली है अपने लाइव म्यूजिक के साथ, जहां पर बहुत फन होगा। चटपटा म्यूजिक, चटपटे गाने, सब कुछ। आप जो है टिकट जाके स्नूनू से भी ले सकते हैं, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। और बाकी आप इंस्टाग्राम पर जाइए, रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सारे नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल जो है हम जो है बात कर लेते हैं गाने की, कि कौन सा गाना जो है वो मैंने आपको सुना के पूछा था कि मूवी बताओ। और बस इसी वाइब के साथ जो है हम ए हालो धूम जो है वो शुरू करने वाले हैं। फिलहाल आज की हमारी विनर जो है उनका नाम जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो हमारी आज की विनर है नेहा परमार। नेहा जी कंग्रेचुलेशंस, आपके पास हमारे जो है ऑफिस की तरफ से कॉल आ जाएगा, हमारी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा। सो आपसे मिलते हैं हम ए हालो धूम में। बाकी फिलहाल आप सब जो है दिल छोटा ना करें, अगर आपको भी इस इवेंट में आना है सो उसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर मिल जाएंगी, और सुनू पे जाकर आप टिकट जो है वो भी बुक कर सकते हैं। फिलहाल जो है जुबी डुबी गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए। आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जी बिंदास।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

यस गाइस, सब रख लीजिए आप, मेरा प्यार, मेरा चैन, मेरा सुख, सब कुछ रख लीजिए, बस अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो मुझे भेजते रहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कुल सी छोरी कशिश और आप मेरे साथ बिंदास मॉर्निंग शो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। सो मैं चलती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, और कल जो है वीकेंड की शुरुआत जो है, मतलब वीकेंड का स्वागत करेंगे हम बिंदास मॉर्निंग पर। सो आइएगा ज़रूर, बाकी मुझे याद करते रहिए, रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को जाकर फॉलो कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स वहाँ मिलती रहें। फिलहाल जाते जाते आपको टॉक्सिक मूवी का तबाही गाना जो है वो मैं सुनाते हुए जा रही हूँ, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है लाइफ मस्त है. और सुबह सुबह एक सवाल लेकर आई हूँ. क्या आपको लगता है कि आपको हर चीज में गुड होना चाहिए? भाई कुकिंग भी परफेक्ट आनी चाहिए, करियर भी सॉर्टेड होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी अमेजिंग होनी चाहिए, फिटनेस भी मेंटेन्ड हो, फैशन भी ऑन पॉइंट और इंस्टाग्राम लाइफ तो ऑब्वियसली परफेक्ट होनी चाहिए. बट ऑनेस्टली क्यों? किसी एक पर्सन को देखिए, वो अमेजिंग स्पीकर है, कोई ब्रिलियंट नंबर्स में है, कोई एकदम नेचुरली क्रिएटिव है, कोई ऐसा है जो सारी चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल करना जानता है. और हो सकता है कि आपके अंदर भी किसी एक क्वालिटी को आप देखना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं दिखी है, पर वो बहुत नेचुरली आती हो. बस आप उसको कंपेयर करते करते नोटिस ही नहीं करते. यू डोंट नीड टू डू मतलब ऐसे हर चीज़ जो आप नहीं करना चाहते या आप नहीं कर सकते, उसमें आपको अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू नो व्हाट फील्स लाइक यू. सो आज का सवाल है कि ऐसी एक चीज़ क्या है जिसमें आप नेचुरली बहुत ही बढ़िया हो विदाउट ट्राइंग टू हार्ड. मे बी कुकिंग, मे बी मेकिंग पीपल लाफ, मे बी लिसनिंग, मे बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर लोगों को शॉपिंग करवाने में. भाई मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं ये लास्ट वाली हूँ. अगर कोई शॉपिंग की बात कर दे रहा तो मैं उसे सारे स्टोर्स दिखा देती हूँ और बताती हूँ कि भाई क्या फैशन में है, क्या नहीं है. सो यू टेल मी कि आप क्या बढ़िया करते हो. यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM. शुरू करते हैं.

0: कल बात कर रही थी मैं कि किसने आसमान देखा और किसने नहीं। अब आपको पता है कि आज मीटियोर शावर जो है वो एक्टिव रहेगा, सो ये कल तक रहेगा बेसिकली। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोस्ट मीटियोर शावर आर बेस्ट सीन लेट एट नाइट और बिफोर डाउन, ठीक है। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि देर आर बेस्ट व्यूड इन द इवनिंग ऑल्सो। तो अगर आप ऑफिस से फ्री होने के बाद आज शाम को घर जाके एक चाय के कप के साथ अपनी छत पर जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो टुनाइट अगर वेदर और स्काई कंडीशंस दोनों ही कॉपरेट करते हैं, लाइट से थोड़ा दूर जाइए, ठीक है, फोन साइड में रखिए और देखिए आसमान, क्योंकि हमने शूटिंग स्टार्स को भी इंस्टाग्राम कंटेंट बना दिया है। पहले विश करते हैं फिर वीडियो बनाते हैं, गाइज लुक व्हाट आई कैप्चर्ड, बट लेट्स गो ओल्ड स्कूल टुनाइट। अगर शूटिंग स्टार देखे तो फिर फोटो मत लेना, बस अच्छे से उसे देखना, एंजॉय करना और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM। अगर आज रात आपको एक शूटिंग स्टार दिखे और सिर्फ वन विश मांगना हो आपको, तो आप क्या मांगोगे बताओ मुझे। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindaas.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना cool song of the hour.

Okay, now let's talk about Bollywood fans. You are listening Radio All Over 6.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है Life Must है. So आज favorite actor की नहीं favorite movie की बात करते हैं. आज थोड़ा imagination करते हैं. ठीक है, अगर आपको 24 घंटे के लिए किसी Bollywood character की life मिल जाए, who would you choose? भाई मैंने तो सोचा कि मैं माधुरी दीक्षित टाइप का कोई कैरेक्टर चुनूंगी. लोगों ने बोला कि भाई गीत फ्रॉम जब वी मेट, 24 घंटे के लिए फुल कॉन्फिडेंस और मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला कैरेक्टर. रेंचो फ्रॉम थ्री इडियट्स, नो प्रेशर, नो रैट रेस, जस्ट जुगाड़. और बस कभी कभी ना कभी खुशी कभी गम की वो याद आती है, क्योंकि हु आर यू वेयरिंग, एनर्जी चाहिए. मतलब मे भी कभी कबीर खान फ्रॉम चक दे इंडिया, और आप कैरेक्टर इसीलिए चूज करोगे क्योंकि यू लव देयर लाइफ, राइट, या क्योंकि यू वॉन्ट टू बोरो देयर पर्सनैलिटी. दो चीज़ें हो सकती हैं. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें ना हम देखते हैं, पर अगर सिर्फ 24 घंटे की बात है देन आई विल गो फॉर माधुरी दीक्षित. यू नो, टेल मी 24 घंटे के लिए अगर आप कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर बनना चाहोगे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान. Stay tuned, Jio Bindas.

ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। क्या आपको पता है जिस कंफर्टेबल फैब्रिक को आप रोज पहनते हैं उसका नाम एक्चुअल में एक अरेबिक वर्ड कार्टून से आया है। इसका मतलब होता है फाइन टेक्सटाइल। बात हो रही है कॉटन की, जो सिर्फ व्हाइट नहीं बल्कि बिना किसी आर्टिफिशियल कलर्स के ब्राउन, रेड और ग्रीन जैसे वाइब्रेंट शेड में भी नेचर में पाया जाता है। इस वर्सेटाइल प्लांट का अपना एक अलग ही नो वेस्ट रूल है, मतलब कॉटन से कपड़े बनते हैं और इसके बचे हुए सीड से ऑयल बनता है। और कॉटन ही है जो दुनिया भर में 250 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरों के और खुद के कपड़ों की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। हैप्पी वर्ल्ड कॉटन डे।

0: बहुत बार ऐसा होता है कि एक सुपरहिट गाना आपको गाना याद है, म्यूजिक लवर हो, लेकिन आपको सिंगर का नाम याद नहीं रहता। सो आज एक कन्फेशन है, अगर गाना ऐसा होता, लिरिक्स पूरे याद हैं, ट्यून पूरी याद है, म्यूजिक वीडियो तक याद है, लेकिन सिंगर का नाम वो वही सिंगर, दैट्स द वन हिट वंडर फिनोमिनन। एन आर्टिस्ट गिव्स अस ना वन सॉन्ग दैट बिकम्स एब्सोल्युटली मैसिव, एवरीवन सिंगिंग यू नो सेम सॉन्ग, रील्स बन रही होती हैं, शादियों में गाना बज रहा होता है, एंड देन समहाउ द आर्टिस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम यू नो मेन स्ट्रीम जो होता है वहाँ से वो डिसअपियर हो जाता है। बट एज वन ह्यूज सॉन्ग मेक अ सक्सेसफुल करियर। और मुझे ऐसा लगता है कि नो बार बार एक ही सिंगर को कितनी बार प्रूव करना पड़ता है, अच्छे गाने गाने पड़ते हैं। सो यू टेल मी, आपको कौन सा सॉन्ग पूरा याद है, बट सिंगर का नाम याद करने के लिए आपको गूगल खोलना पड़ता है। ऐसे बहुत गाने हैं मुझे जो यू नो गाने बहुत पसंद है, फिर मुझे एकदम से याद आता है, यस ये तो इसने गाया था। यू टेल मी कि आपके साथ भी ऐसा होता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: Radio

आज नई किताब की बात करते हैं, बट आई एम नॉट आस्किंग व्हाट्स योर फेवरेट बुक. बात करते हैं कि विच बुक चेंज्ड योर ओपिनियन अबाउट समथिंग. मे बी यू थॉट सक्सेस मीन्स मनी, और फिर आपने कोई किताब पढ़ी हो और आपको पता चला हो कि यार ये तो थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है. मे बी यू थॉट रिलेशनशिप्स आर अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट पर्सन एंड बुक मेड यू लुक एट देम डिफरेंटली. मे बी यू थॉट कि फेलियर का मतलब एंड होता है एंड देन किसी एक स्टोरी ने आपको कंप्लीटली दूसरा पर्सपेक्टिव दे दिया हो. दैट्स वॉट आई लव अबाउट गुड बुक्स. यू नो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. जब मैं किताबें पढ़ना शुरू कर रही थी, इट वॉज माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, मैंने हमेशा सोचा था कि जब मैं कॉलेज चली जाऊंगी तो मैं किताबें पढ़ना शुरू करूंगी, मतलब नॉवल और लव स्टोरीज और कुछ सेल्फ हेल्प जो बुक होती है. और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया उस टाइम पर जब हम ना बिल्कुल शेप हो रहे होते हैं, हमें समझ आ रहा होता है लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में. एंड वो आपको हमेशा आंसर नहीं देती, समटाइम्स दे चेंजेस द क्वेश्चन और जो आपके मन में होते हैं. ठीक है, कभी कभी आपको लग रहा होता है कि हाउ टू अर्न मनी, पर किताबें आपको सिखाती हैं कि पैसे कमाने के अलावा पैसे मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है. और कभी कभी एक लाइन पूरी थिंकिंग शिफ्ट कर देती है. सो यू टेल मी कि कौन सी बुक ने आपको किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिफरेंट वे में देखना सिखाया. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

यार मैं जब भी अपना वार्डरोब इमेजिन करती हूँ, इतनी सारी ब्लैक ड्रेसेस, कितनी सारी शर्ट्स, कितनी सारी जीन्स, और फिर हम बोलते हैं कि मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। एक्चुअली फैशन में हमारा एक कंफर्ट जोन होता है। अगर एक पर्टिकुलर कलर हम पर अच्छा लग रहा है तो हम उसी कलर की 5 more versions ना खरीद लेते हैं, और स्नीकर्स कंफर्टेबल हैं, अनदर पेयर, अनदर शेड, अनदर डिज़ाइन, समथिंग, मतलब सेम चीज़ को हम बहुत सारी उसमें खरीद लेते हैं। मे बी पर्सनल स्टाइल का मतलब एग्जैक्टली यही होता है, नोइंग वॉट वर्क्स फॉर यू। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान, और शो का नाम लाइफ मस्त है। बट कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, बट द थिंग इज कि जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करवाता है ना, वो है टाइमलेस। सो अभी यू नो दिस वीकेंड, अभी तो वीकेंड आया नहीं है, बट कल जब वीकेंड आ जाएगा थर्सडे के साथ, तो मैं ये सोच रही थी कि इस बार मैं अपना वार्डरोब थोड़ा सा यू नो से फ्रेंड

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।

स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। क्या आपको पता है जिस कंफर्टेबल फैब्रिक को आप रोज पहनते हैं उसका नाम एक्चुअल में एक अरेबिक वर्ड कार्टून से आया है। इसका मतलब होता है फाइन टेक्सटाइल। बात हो रही है कॉटन की, जो सिर्फ व्हाइट नहीं बल्कि बिना किसी आर्टिफिशियल कलर्स के ब्राउन, रेड और ग्रीन जैसे वाइब्रेंट शेड में भी नेचर में पाया जाता है। इस वर्सेटाइल प्लांट का अपना एक अलग ही नो वेस्ट रूल है, मतलब कॉटन से कपड़े बनते हैं और इसके बचे हुए सीड से ऑयल बनता है। और कॉटन ही है जो दुनिया भर में 250 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरों के और खुद के कपड़ों की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। हैप्पी वर्ल्ड कॉटन डे।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।

0: हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

तो हमारी लाइफ में दो मेजर जगह होती हैं, एक तो होता है हमारा घर जहां हम रह रहे होते हैं और दूसरा होता है हमारा ऑफिस। बट साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, दे हैव टॉक्ड अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ स्पेस, अ प्लेस वेयर यू सिंपली एग्जिस्ट। कोई कैफे हो सकता है, कोई लाइब्रेरी, कोई चाय शॉप, कोई जिम, कोई सलोन, इवन दैट वन फ्रेंड्स हाउस जो आपको जाकर बहुत अच्छा लगता है। सो वहां हम एम्प्लॉय नहीं होते, किसी के पार्टनर नहीं होते, किसी के पेरेंट्स नहीं होते, बस हम होते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। शायद इसीलिए ना कुछ कैफेज में कॉफी एवरेज होती है, बट हम फिर भी वहीं पर जाना पसंद करते हैं क्योंकि हम कॉफी पीने नहीं, अपना वर्जन ऑफ आर सेल्फ से मिलने जा रहे होते हैं। ऐसे ही किसी दोस्त का घर होता है जो आप सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे जा पाते हो, लेकिन आपको लगता है कि यार ये बहुत कंफर्टेबल जगह है। आपकी लाइफ में वो थर्ड प्लेस कौन सा है जहां जाते ही आपको लगता है कि हाँ, यहां मैं बिल्कुल अपने मूड में रहती हूँ और ऐसा लगता है कि यार ये मेरा अपना घर है या ये मेरी अपनी जगह है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। Radio

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

0: आपको पता है खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब आपको क्या पसंद है, आप क्या खाना पसंद करते हो, आपको रेगुलरली यू नो अपनी डाइट में क्या चाहिए होता है. तो फूड का एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन होता है इमोशंस के साथ. सेलिब्रेशन मतलब केक, बारिश हो रही है मतलब कुछ पकौड़े खाने, होम सिक हो घर का खाना खाने का मन करेगा, कुछ बुरा दिन चल रहा है मे बी मैगी खाने का मन करेगा, लेट नाइट समथिंग स्पाइसी, एंड समटाइम्स अ पर्टिकुलर फूड इज नॉट इवन डिलीशियस बिकॉज ऑफ द रेसिपी, इट्स डिलीशियस बिकॉज ऑफ द मेमोरी. सो मम्मी के हाथ की दाल, नानी के हाथ के पराठे, स्कूल के समोसे, कॉलेज वाली चाय, वो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट वहाँ जहाँ फ्रेंड्स के साथ आप जाते थे. फूड डजंट जस्ट फीड अस, ठीक है, इट स्टोर्स मेमोरीज. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. अब जैसे जैसे वीकेंड पास आता है ना तो मुझे यही सब चीज़ें याद आती हैं, खाने में क्या अच्छा लग रहा है, कपड़े क्या पहनने हैं, कहाँ पर जाना है. अब कल थर्सडे आ जाएगा, कैन यू इमेजिन, मतलब अभी तो वीकेंड खत्म हुआ था और कैसे पूरा वीक निकल गया पता भी नहीं चला. मतलब काम करते करते, मेल्स भेजते भेजते, मेल्स का वेट करते करते हम पूरे 5 दिन निकाल देते हैं और फिर हमें याद आता है कि यार लाइफ भी तो एक चीज़ है. बाय द वे फूड की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि जो एक पर्टिकुलर फूड होता है ना वो आपकी पर्सनालिटी बताता है. जैसे आपको सिंपल खाना खाना पसंद है या आप पूरा टाइम चाहते हो कि यार कुछ पिज़्ज़ा बर्गर और यू नो बिरयानी टाइप की चीज़ें मिलती रहें. सो आपका अल्टीमेट कम्फर्ट फूड क्या है और उसके साथ कौन सी आपकी मेमोरी अटैच्ड है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: Awesome. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Awesome.

0: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर. गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ.
2: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स.
1: क्लॉक इज टिकिंग. ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक. डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग. आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर.
0: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस. दोहा, कतर.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

बहुत ही सॉफ्ट सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ. हैव यू एवर सडनली रिमेम्बर्ड समवन एंड थॉट कि यार हम तो अब बात भी नहीं करते, मतलब आपको किसी ऐसे की याद आई जिससे सालों से बात नहीं हुई. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. ज़रूरी नहीं है कि उससे लड़ाई हो रखी हो, हो सकता है कोई कॉलेज की फ्रेंड हो सकता है कोई ओल्ड कॉलीग हो, कोई नेबर, समवन हु वाज वंस अ वेरी रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है. और फिर ऐसा होता है कि लाइफ हैपेंड, पीपल मूव्ड, नंबर चेंज हो जाते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टॉप हो जाती हैं, बट वन रैंडम सॉन्ग या कोई स्मेल या कोई कॉन्वर्सेशन या कोई यू नो कोई स्ट्रीट या सडनली कुछ ऐसा याद आता है, दैट पर्सन इज़ बैक इन योर हेड. मतलब बात अभी भी नहीं हुई है, बस आपको याद आ जाता है. बट मे बी वी डोंट ऑलवेज मिस द पर्सन, समटाइम्स वी मिस हु वी वर व्हेन वी वर विद देम, राइट? दैट वर्जन ऑफ आर सेल्फ, दैट फेस, दैट सिटी, दैट इनोसेंस, और यही सब चीज़ें ना मुझे बार बार याद आती है. मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि आपने ऑफिस चेंज किए होते हैं, आपने स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से ऑफिस, ये सब ज्वाइन किया होता है, और आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर धीरे धीरे वो लोग चले जाते हैं और धीरे धीरे आप उनसे बात करना भी बंद कर देते हो. सो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप अब बात तो नहीं करते पर उनकी मेमोरी आज भी आपको स्माइल करवा देती है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है.

ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। क्या आपको पता है जिस कंफर्टेबल फैब्रिक को आप रोज पहनते हैं उसका नाम एक्चुअल में एक अरेबिक वर्ड कार्टून से आया है। इसका मतलब होता है फाइन टेक्सटाइल। बात हो रही है कॉटन की, जो सिर्फ व्हाइट नहीं बल्कि बिना किसी आर्टिफिशियल कलर्स के ब्राउन, रेड और ग्रीन जैसे वाइब्रेंट शेड में भी नेचर में पाया जाता है। इस वर्सेटाइल प्लांट का अपना एक अलग ही नो वेस्ट रूल है, मतलब कॉटन से कपड़े बनते हैं और इसके बचे हुए सीड से ऑयल बनता है। और कॉटन ही है जो दुनिया भर में 250 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरों के और खुद के कपड़ों की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। हैप्पी वर्ल्ड कॉटन डे।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: तो चलिए यहाँ पर मेरे जाने का टाइम हो गया, लेकिन जाते जाते एक बहुत सिंपल सा सवाल आपके पूछूंगी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। लाइफ के बड़े मोमेंट्स तो सबको याद रहते हैं, वो पहली सैलरी, वो पहली कार, शादी, प्रमोशन, बिग ट्रिप, बट हैप्पीनेस समटाइम्स इट्स रेडिकुलसली स्मॉल। आपको पता है इतनी सिंपल सी चीज़ें आपको इतनी बड़ी लगती हैं, जैसे कि आपको आज ट्रैफिक नहीं मिला, ठीक है, शाम को घर जाते वक्त फेवरेट गाना एग्जैक्टली जब मूड ऑफ है तब प्ले हो गया, या फिर कोई परफेक्ट चाय किसी ने बनाकर आपको पिला दी, समवन सेविंग यू नो यू द लास्ट पीस ऑफ फेवरेट केक, मतलब जो आपको लग भी नहीं रहा था कि आपके लिए किसी ने बचाया होगा, किसी फ्रेंड का रैंडमली कॉल आ गया, या स्ट्रेंजर ने आपके लिए कुछ भेज दिया, ये सुबह अलार्म 10 मिनट पहले बजने से पहले ही आपकी आंख खुल गई, दैट्स लग्जरी टू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें तो ठीक है, पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, पूरा दिन बना देती है। हम बड़े मोमेंट्स का वेट करते रह जाते हैं और मीनवाइल लाइफ के छोटे मोमेंट्स धीरे से बहुत ही अच्छे से आपको मैनेज कर लेते हैं। सो आज आपके डे को बेटर बनाने वाली एक छोटी सी चीज़ क्या है जो सुबह से अभी तक आपके साथ हुई है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। हो सकता है कि एक अच्छी कॉफ़ी, हो सकता है कि कोई अच्छा कॉन्वर्सेशन, हो सकता है कि कोई पेंडिंग टास्क था जो आपने ख़त्म कर लिया, मे बी सिंपल सा कुछ हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स हैप्पीनेस डजंट मेक अ ग्रैंड एंट्रेंस, कभी कभी वो बस चाय के एक कप के साथ धीरे से आ जाती है। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा सुपर हिट गानों के साथ, मैं जा रही हूँ, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर
2: ये गाना।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ। ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम ऑलिव रिचार्ज में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहां पे हम एक जर्नी शुरू करने वाले हैं जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो चलिए धीरे धीरे धीरे हम अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए और बताइए क्या हाल है। और यही बोलते हुए शुरू करते हैं वाले रिचार्ज कॉल, कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक 19 साल के बंदे के बारे में बात करना चाहूंगा जिसने भाई रिकॉर्ड बना दिया। वो कैंडी क्रश सागा के लेवल 22,222 तक पहुंचा, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उसे एक सर्टिफिकेट भी मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। और 19 साल की उम्र में इतना बड़ा एक लेवल जो है उसने अचीव किया है कैंडी क्रश गेम में। तो मुझे तनीषा बता रही थी कि मैं भी ये कर सकती हूँ। मैंने बोला नहीं भाई, ये इतनी आसानी से नहीं होता। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं बिना बूस्टर्स के इन सब के कुछ लेवल्स पार नहीं कर पाता। ये बंदा कितना लगा हुआ होगा यार, मतलब इसकी लगन के एक सैल्यूट तो बनता है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यहां पे एक बहुत ही बढ़िया खबर मैंने देखी। हैदराबाद में एक लॉयर ने जो है एक बहुत ही बढ़िया चीज करी। सो बेसिकली वो बंदा एक लेट नाइट मूवी देखने के लिए गया था, जहां पे उसके बाद उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला कि मूवी जो है 17 मिनट लेट शुरू हुई थी, क्योंकि जो मूवी स्क्रीनिंग कंपनी थी उन्होंने 17 मिनट एडवर्टाइजमेंट्स में लगाए। उसने 10:35 PM का शो बुक किया था, 17 मिनट बाद जो है मूवी शुरू हुई, उसके कारण उसकी जर्नी पूरी डिले हो गई, क्योंकि 2 बजे उसे पहुंचना था मगर वो घर पहुंचा 3 बजे। तो इस इनकन्वीनियंस के लिए उसने कंज्यूमर कोर्ट में जो है केस डाला और केस जो है उसके फेवर में आया और उसे उस कंपनी ने 75,000 रुपए दिए। तो कभी कभी मैं इस चीज को दो तरीके से सोचता हूँ। जब हम लेट होते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है भाई, एडवर्टाइजमेंट्स है ना, कोई बात नहीं, जब तक हम पहुंचेंगे एडवर्टाइजमेंट चलेंगे और मूवी आराम से देख लेंगे, बिगिनिंग भी कुछ मिस नहीं होगी। तो ये चीज जो है ये कभी कभी एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी बनता है, कभी कभी काफी इनकन्वीनियंट चीज भी हो सकता है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। क्या आपको पता है जिस कंफर्टेबल फैब्रिक को आप रोज पहनते हैं उसका नाम एक्चुअल में एक अरेबिक वर्ड कार्टून से आया है। इसका मतलब होता है फाइन टेक्सटाइल। बात हो रही है कॉटन की, जो सिर्फ व्हाइट नहीं बल्कि बिना किसी आर्टिफिशियल कलर्स के ब्राउन, रेड और ग्रीन जैसे वाइब्रेंट शेड में भी नेचर में पाया जाता है। इस वर्सेटाइल प्लांट का अपना एक अलग ही नो वेस्ट रूल है, मतलब कॉटन से कपड़े बनते हैं और इसके बचे हुए सीड से ऑयल बनता है। और कॉटन ही है जो दुनिया भर में 250 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरों के और खुद के

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और एक ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है बॉलीवुड में और साथ ही साथ तमिल मूवी इंडस्ट्री में, वो ये है कि दोनों इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के जो बेटे हैं वो एक्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि डायरेक्शन के लिए जा रहे हैं, और दोनों काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से जो है आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान का जो बेटा है वो सीधा गया डायरेक्शन में, उसने बैट्स ऑफ बॉलीवुड जो है डायरेक्ट किया और काफ़ी बढ़िया जो है उसका अपील बना और काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों ने बैट्स ऑफ बॉलीवुड को जो है रिसीव किया और एक डायरेक्टोरियल डेब्यू जो था उसका काफ़ी बढ़िया हुआ। सिमिलरली तमिलनाडु के सुपरस्टार जो वहाँ के सीएम भी हैं विजय के बेटे संजय ने जो है उन्होंने भी डायरेक्टोरियल डेब्यू जो है किया। उन्होंने एक मूवी बनाई और उस मूवी को रिलीज़ किया अक्टूबर 2 को, और मूवी काफ़ी स्ट्रांग तरीके से जो है आगे बढ़ रही है। ओपनिंग डे में ही 2 करोड़ के आसपास जो है कलेक्शन जो उस मूवी को मिले हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी फुटिंग हुई है। और हमने ये ज़रूर देखा है कि सुपरस्टार्स के जो बेटे हैं आजकल के जनरेशन में, वो लोग एक्टिंग के बजाय डायरेक्शन और मूवी के डिफरेंट डिफरेंट और एस्पेक्ट्स की ओर जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड चेंज आई गेस। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग एक खबर मेरे हाथ में लगी है। एक अमेरिकन रैपर है जिनका नाम है लिल स्काइज। वो जो है एक दिल्ली बेस्ड इंडियन स्ट्रीट वेयर लेबल के साथ जा रहे हैं जिसका नाम है गो डेविल। और इसके थ्रू क्या होगा, हिप हॉप के फैशन सीन में, यानी कि ग्लोबल हिप हॉप के फैशन सीन में एक स्ट्रांग इंडियन प्रेजेंस जो है देखने को मिलेगा। और अमेरिकन रैपर लिल स्काइज जो है काफी बड़े एक नाम है हिप हॉप सीन में, और उनका ये कोलैबोरेशन जो एक दिल्ली बेस्ड ब्रांड है उसके साथ होना ऑब्वियसली इंडिया के जो हिप हॉप फैशन स्टेटमेंट्स बनाने वाले कंपनीज हैं या फिर ब्रांड्स हैं उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट जरूर देगा। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas.
1: घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par, Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance dekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom.

कभी कभी यार लाइफ में सक्सेस थोड़ी लेट मिलती है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो हैं जिस तरीके से कंडीशन्ड है, जिस तरीके से हमारे आसपास के समाज में लोग बोलते हैं कि जल्दी सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम सब अपने टाइमलाइन के हिसाब से ही चलते हैं, सबका टाइमलाइन अलग है, कोई एक टाइम पे सक्सेसफुल होता है, कोई अलग टाइम पे सक्सेसफुल होता है, हमें बस अपने जर्नी में लगे रहना है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है बोमन ईरानी, जो एक टाइम में एक महीने में 105 रुपए कमाते थे एक वेटर के तौर पे। वहां पे वो बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स की ओर जो है बढ़ चुके हैं। और बोमन ईरानी की जर्नी जो है हमें ये दिखाती है कि कभी कभी लाइफ में हम थोड़ा लेट ब्लूम करते हैं, मगर जब ब्लूम करते हैं तो तगड़ा वाला करते हैं। वही तो कहते हैं कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। इसलिए अपने जर्नी में लगे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, अपने आप के लिए और अपने एफर्ट्स के लिए बहुत ही सिंसियर रहिए। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंद।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाई अगर आप अपने ऑफिस में फन करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, अपने आप को रिचार्ज और रीएनर्जाइज करना चाहते हैं, तो रजिस्टर कर लीजिए हैप्पीनेस लाउंज के लिए। आपको मैसेज करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 3311063 पर, एचएल स्पेस आपके कंपनी का नाम, ताकि हमारे टीम से एक बंदा आपको कनेक्ट करे, आपसे बात करे। सो बेसिकली हम आपके ऑफिस में आएंगे, विजिट करेंगे, काफी फन करेंगे, एंजॉय करेंगे, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करेंगे। तो वर्क डे के टाइम में ही अगर फन करना चाहते हो तो मैसेज करना मत भूलना। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

भाई अगर आप अपने इंस्टाग्राम में अपने पार्टनर को बहुत ही सटल तरीके से सॉफ्ट लॉन्च करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम जो है आपकी मदद कर सकता है। ऐसा एक नया फीचर जो है इंस्टाग्राम में आया है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि यार अपना रिलेशनशिप स्टेटस जो है काफी सटल तरीके से थोड़ा फ्लॉन्ट करने का वक्त आ चुका है, मगर कौन है बंदा हमारा उसके बारे में नहीं बताना चाहते लोगों को, या फिर कौन है हमारी पार्टनर उसके बारे में आप नहीं बताना चाहते लोगों को, मगर बताना चाहते हो कि हाँ हम जो है एक रिलेशनशिप में हैं। तो बहुत ही सटल तरीके से सॉफ्ट लॉन्च करने का एक फीचर जो है इंस्टाग्राम में आया है। बेसिकली स्टोरी डालते वक्त आप जब इफेक्ट्स पे क्लिक करते हो तो उसमें एक प्रॉम्प्ट आप टाइप कर सकते हो जहां पे आप अपने सब्जेक्ट को, आपके साथ जो खड़ा है या फिर जो खड़ी है उनके चेहरे को पिक्सेलेट करने के लिए जो है एक प्रॉम्प्ट आप डाल सकते हो, जिससे आप अपने रिलेशनशिप को सटली फ्लेक्स भी कर सकते हो मगर आइडेंटिटी भी रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई यार तो पहला सवाल यही आता है कि अगर चेहरा दिखाना ही नहीं है तो फिर फोटो क्यों डालनी है। बट एनी वे सबके अपने अपने पसंद होते हैं भाई, और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर। गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
1: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स।
0: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर। गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट। स्प्लिट योर पेमेंट इनटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। प्लस गेट अ रिप्लेसमेंट कार फॉर अप टू 3 days, अ वन टाइम एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ एंड व्हीकल इंस्पेक्शन ट्रांसपोर्टेशन। चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टूडे। कॉल 800-786 और व्हाट्सएप 7405055 और विजिट bima.com.qa। Bima for your peace of mind. TNC apply.
5: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Akshay Kumar.
8: Hi, this is Anushka Sharma.
9: And I'm Arshul Varsi.
10: This is Ranveer Singh. Stay tuned.
11: 106.3 Radio Olive.
12: This hour is brought to you by
13: Malabar Gold and Diamonds. Me, sirf 25% advance dekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: the biggest idiosyncrasy is that life comes a full circle. और ऐसा ही हुआ है मेसी के लाइफ में भी. हम सब जानते हैं मेसी ने जो है अपने फुटबॉल करियर का फाइनल मैच खेला अर्जेंटीना के लिए, उसके बाद जो है वो रिटायर हो रहे हैं. और सोच के देखिए, एक ऐसा लड़का जिसको ग्रोथ डिफिशेंसी थी, वहाँ से फुटबॉल के इतने बड़े स्टेज में इतना बड़ा स्टार वो बना है, उनको गोट बोला जाता है. और मैं तो यही मानता हूँ कि भाई फुटबॉल की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों से लायनल मेसी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो है इतना बड़ा है, इतने लोगों को उन्होंने सपने दिखाए हैं. और उसके साथ साथ अगर हम उनके करियर में देखें तो कई बार जो है उन्होंने अपने आंखों के सामने ट्रॉफी को जाते हुए देखा है, चाहे वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो, कोपा अमेरिका ट्रॉफी हो, बहुत सारे मेजर माइलस्टोन्स उनके हाथ से फिसले हैं, मगर जीत उनकी कदम चूमेगी ये किस्मत में भी तय कर रखा था. और उसके लिए कतर की मिट्टी में वो आए और यहाँ पे वर्ल्ड कप उन्होंने उठाया. और देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें जो है जो हमें मिलनी होती है वो हमें मिलेंगी ज़रूर, बस थोड़ा सा वक्त लग जाता है. और लायनल मेसी के इस रिटायरमेंट के बाद फुटबॉल बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा. उसी के साथ ही साथ उनके काउंटर पार्ट जिनको हम बोल सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी जो है बोल रखा है कि मैं भी रिटायर हो रहा हूँ. तो फुटबॉल का बहुत बड़ा लॉस है एक्चुअली. और लायनल मेसी को एक बहुत बड़ा सैल्यूट देते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो दिनदास.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, बार बार याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक रेडियो ओलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया जानी तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम में radioolive.qa सर्च कीजिए, वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है प्रेस कीजिए और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके साथ साथ आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं, पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद दिलाऊंगा, वो यही है कि बहुत बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो जरूर हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ आप जुड़े रहिए, गिफ्ट जीतने के मौके भी हैं। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। क्या आपको पता है जिस कंफर्टेबल फैब्रिक को आप रोज पहनते हैं उसका नाम एक्चुअल में एक अरेबिक वर्ड कार्टून से आया है। इसका मतलब होता है फाइन टेक्सटाइल। बात हो रही है कॉटन की, जो सिर्फ व्हाइट नहीं बल्कि बिना किसी आर्टिफिशियल कलर्स के ब्राउन, रेड और ग्रीन जैसे वाइब्रेंट शेड में भी नेचर में पाया जाता है। इस वर्सेटाइल प्लांट का अपना एक अलग ही नो वेस्ट रूल है, मतलब कॉटन से कपड़े बनते हैं और इसके बचे हुए सीड से ऑयल बनता है। और कॉटन ही है जो दुनिया भर में 250 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरों के और खुद के कपड़ों की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। हैप्पी वर्ल्ड कॉटन डे।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे खत्म होने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं, जबरदस्त इवनिंग शुरू होने वाला है। तो भाई यही बोलते हुए हम भी जरा निकलते हैं, मगर जाते जाते जाते आपको यही याद दिलाना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

दिल दी आवाज, इस तो हो गया शो दा आगाज। ओए हे हे, मुझे लगा था मेरा फंबल ना आ जाए, आउटफिट जो सूट पहना हुआ था इसमें अपना जैस्मीन ने, अगर आपने देखा होगा भाई, बहुत ही प्यारी लग रही थी।

रहने दे, तो गल होने वाली है बेबी, वीकेंड आने वाला है। और बताओ क्या हाल चाल है आपके, कैसा रहा आपका आज का दिन। 3311063 पर आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और आज का शो बहुत ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि डांडिया गरबा अगर आपको करने का शौक है, कपड़े रेडी हैं आपके, नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि इस दिन के लिए तो इंसान जो है वो कर लेता है कपड़े रेडी। सो आज मेरे पास एक नहीं दो कपल पासेस हैं। सो अगले घंटे और उससे अगले घंटे मैं आपको कपल पासेस जो है वो देने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप अपनी तैयारी जो है वो कर लीजिए। डांडिया और गरबा, डांडिया बोलो गरबा बोलो, मतलब नाचने के लिए तैयार हो, डांस करने के लिए तैयार हो, तो आपको ये पासेस जो है वो जरूर मिलने वाले हैं। बट अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा और आपका बड़ा सारा ग्रुप है, तो आप एक काम करिए, इससे पहले कि टिकट्स बिक जाए, स्नूनू सिटी में जाके जो है वो टिकट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि इस 9th अक्टूबर को रेजेंसी हॉल में हम आपको मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर कि टाइमली आप ये काम कर लीजिए। 5:08:35 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, और अब तक अगर आपने मुझे गुड इवनिंग का मैसेज नहीं भेजा है तो मैं नहीं बात कर रही आपसे कुछ मिनट फिर कर लूंगी। सो आजकल एक गाना मैं बैक टू बैक सुन रही हूँ, मतलब गाने में बहुत प्यार है। गाना थोड़ा स्लो है लेकिन इसके लिरिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, मतलब क्या करूं मैं यार। सुनो आप ध्यान से सुनो, ठीक है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट, और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड डायमंड्स।
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

आय हाय अदान सामी की आवाज और ये गाना जी भाई साहब पानी की आवाज कितनी सही लगती है ना यार। अचानक से गले में क्या हो गया यार, और जबरदस्त इवनिंग्स आप सुन रहे हैं। क्योंकि जो है ना वो होके रहने, टेंशन क्या लेनी बेबी। चलो अब मैं आपको सुनाती हूँ मौसम का हाल। 35 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस है। आज का मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 30 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी कल भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा यार, 63% है। विंड जो है 13 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। तो इतनी रफ्तार ना कितने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। और इतनी रफ्तार से क्या सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, एक ही चीज बार बार सोचते जा रहे हो। और कितनी सारी टैब्स खुली हुई हैं उनको भी अलग से आपने सोचना है। इतना क्या सोचते हो यार, थोड़ी देर पॉज लो डार्लिंग। और ये गाना सुनो यार, मूड बन जाएगा। बहुत पसंद है मुझे ये गाना, मेरा मूड चंगा हो जाता है इस गाने को सुन के, एकदम वाइब सेट हो जाती है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make your drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: किता देखी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुहाडे नाल। और यार क्या क्या क्रिएटिविटी जो है वो लोग करते हैं
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। मुझे ना चाहे मैंने जितना मर्जी प्लेन में ट्रैवल कर लिया हो, लेकिन आज तक भी जब भी मैं प्लेन में बैठती हूँ मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। और जब भी मैं ट्रैवल करने वाली होती हूँ तो मेरे सर के ऊपर जो है वो ट्रैवल एंजाइटी हमेशा रहती है। लोग जो है वो एक्साइटेड होते हैं और मुझे जो है वो डर लगना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो या जब भी मैं प्लेन में बैठती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ अरे यार इसको टायर लगे रहते ना, तो ये मतलब ऐसे टायर तो ऑफकोर्स लगे रहते लेकिन वो एक गाड़ी की तरह होता तो कितना मजा आता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। बट एक बंदे ने एक प्लेन कार बनाई है, मैं देख रही थी कल एक वीडियो, बंदे ने प्लेन कार बनाई है। अब वो रोड पे जो है वो जो एयरक्राफ्ट तो बना हुआ है लेकिन उसको ऐसे वो एक कार की तरह जो है वो रोड के ऊपर दौड़ रहा है। मैंने बोला भाई साहब यही सपना तो मैं देखती थी। लेकिन यस प्लेन जो है उसका काम कार नहीं कर सकती, कार का काम प्लेन नहीं, कार का काम प्लेन कर सकता है चलने का, वो तो हो ही गया है, इस बंदे ने किया है। सो यार मुझे इसके बारे में पूरा नहीं पता है कि ये क्या किस तरीके से उसने ये किया है, कि लीगल तो ऑफ कोर्स होने वाला नहीं, सड़कों पे कैसे दौड़ेगा वो यार प्लेन। लेकिन बंदे ने अपनी क्रिएटिविटी जो है वो डेफिनेटली दिखाई है यार। oh my-

क्रिएटिव हो ना लाइफ में, लाइफ हमारे साथ क्रिएटिव होते जा रही है अलग अलग तरीके से। उफ, थक गई मैं तो यार।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। से ए हालो धू विथ रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट एंड ट्रेडिंग केटरिंग।
1: दोहा वालों, गेट रेडी टू ग्लो, ग्लैम अप एंड ग्रूव। वी आर ब्रिंगिंग यू द अल्टीमेट फैशन फ्यूजन म्यूजिकल नाइट। थ्रो ऑन योर ब्राइटेस्ट मोस्ट कलरफुल फेस्टिव एथनिक वेयर, ग्रैब योर फेवरेट एक्सेसरीज एंड लेट्स लाइट अप द डांस फ्लोर।
0: और अल्टीमेट म्यूजिक के लिए साथ होगी बॉलीवुड की सेंसेशनल स्टार इशिता विश्वकर्मा लाइव।
1: गेट रेडी फॉर देसी बीट्स, चटपटे स्ट्रीट फूड एंड फुल ऑन वाइब्स दिस फ्राइडे 9th अक्टूबर एट रीजेंसी हॉल,
0: 6 PM ऑनवर्ड्स।
1: बुक योर टिकट ऑन स्नूनू सिटी और फॉर मोर info call 3328-3393.
2: Powered by
0: wherever you are heading, book your ride with Badargo, Qatar's own ride hailing app. Badargo, your way to go. Download the app now. Sirf number one log sunte hain number one radio station Radio Olive 106.3 FM.

0: बस यार इंसान नू प्यार ही ते चाहिदा है ते थोड़ा जा गरबा थोड़ा जा डांडिया ते थोड़ा जा म्यूजिक तैयार हो जाइए। चलिए वो डांडिया स्टिक्स जो है उनको लेकर अपन ढम ढम ढम करके डांडिया जो है वो खेलते हैं। सो रेडियो 11A to Z इवेंट्स जो है आप लोगों के लिए लेकर आए ए हालो धूम, जिसमें जम के डांडिया करने के लिए अगर आप तैयार है तो स्नूनू सिटी में जाके फटाफट से टिकट जो है वो अपनी बुक कर लीजिए, ठीक है। सो टिकट तो बुक करेंगे ही, एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई भी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, यानी सॉरी व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 3328-3393। एक बार वापस से बता देती हूँ 3328-3393। इस नंबर पे आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट अगर आपको फ्री डांडिया के पासेस चाहिए तो मैं हूं ना। मेरे पास देखो देखा दो कपल पास हैं। सो इस घंटे एक मिलने वाला है कपल पास, अगले घंटे एक और कपल पास आपको मिलने वाला है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता ही सिमरन आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करती है, क्विकली आपको बस मुझे ये बताना है 15 से 30 सेकंड के अंदर वॉइस नोट भेजना है एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ, अपना नाम बताना मत भूलना। हे सिमरन अपना नाम बताइए और फिर बताइए कि आप ये कपल पास क्यों डिजर्व करते हैं। प्लीज उन बहानों से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए कि मैंने मेरी बीवी को कभी नहीं लेके गया हूं, मेरी बीवी को मुझे सरप्राइज देना है, नहीं, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए डार्लिंग और भेज दीजिए 3311-1063 पर।
1: देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया, सुनो।
2: And he follows my brother.

0: planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
1: यू घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर.
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7700525 पर.
3: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है.
4: हाय, मैं हूँ सारिका.
5: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3. ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क. रेडियो
6: ऑलिव नंबर वन. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ.
8: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
10: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: लगी पूरी डांडिया की फील। आए हाय बहुत सारे डांडिया और गरबा के गाने जो है वो बजने वाले हैं, क्योंकि अगर डांडिया नाइट आप अटेंड करने आए तो फिर डांडिया के गाने ही बजेंगे, डांडिया का फील आपको मिलेगा। ए हालो धूम में स्नूनू सिटी में जाके आप इसकी टिकट बुक कर सकते हैं। ए हालो धूम के नाम से ये इवेंट आपको दिखेगा। सो रिजेंसी हॉल में इस 9 अक्टूबर को आप और हम मिलके डांडिया करेंगे, ठीक है। सो मेरे पास कुछ फ्री टिकट्स भी हैं, है ना, तो मैं आपको वो भी दे रही हूँ। बट मेक श्योर जब भी आप किसी कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हम कपल पास दे रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों के बच्चे भी हैं, सो फिर आप चाहते हो कि हम आपके बच्चों को भी टिकट दें। लेकिन क्या होता है कि रूल होता है ना, उतना ही हिसाब से टिकट होती है। सो अगर आप कपल जा रहे हैं एज ए और कोई तीसरा इंसान नहीं है तो आप टिकट जो है उसके लिए पार्टिसिपेट कर लीजिए। लेकिन अगर कोई तीसरा इंसान है और लास्ट मिनट आप कैंसिल कर रहे हो और लास्ट मिनट पर आप ये भी बोल रहे हो कि आप टिकट दे दो तीसरे बंदे के लिए, है ना, तो मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ लेकिन आप हमारी भावनाएं भी समझिए। सो कपल पास जब हम दे रहे हैं तो तीसरा अगर आपके साथ कोई है तो आपको बुक करनी पड़ेंगी टिकट्स उनकी अलग से, है ना। सो अब आपको ये टिकट बुक करनी है क्योंकि यहाँ पर इशिता विश्वकर्मा लाइव गाने वाली हैं आपके लिए। बॉलीवुड के एकदम डांस होगा, गुजराती गाने जो है वो भी प्ले होने वाले हैं ताकि फील आए आपको डांडिया की। सो क्विकली आप मुझे बताइए कि आप ये कपल पास जो है वो क्यों डिजर्व करते हैं इस डांडिया नाइट का। सो आपने क्विकली मुझे 15 से 30 सेकंड के बीच में बताना है, हे सिमरन करके, कि आप ये कपल पास क्यों डिजर्व करते हो। 3311063 पे भेज दो। भाई डांडिया करने वाले तो इस गाने पे भी डांस कर लेते हैं यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alcor.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

के गाने में लड़की मान गई है यार, इसीलिए कहते हैं चीजें फिल्मी होती हैं। सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल। सिमरन कौर है तोड़े नाल, कभी कभी तो ही लगता है।

0: लेकिन अगर आपके साथ कोई खूबसूरत हम सफर है, वो जरूरी नहीं हम सफर वो पार्टनर है, अगर कोई दोस्त भी है यार, कोई भी है, तो फिर तैयार हो जाओ डांडिया करने के लिए। बिल्कुल डांडिया गरबा करने के लिए तैयार है, क्योंकि डांडिया नाइट जो है वो हो रही है ए हालो धूम जी हाँ के नाम से। अगर आप स्नूलू सिटी पे जाएंगे तो आप वहां पे जाके ए हालो धूम के नाम से इवेंट है, वहां पे जाके टिकट बुक कर सकते हैं डांडिया की। और व्हाट्सएप नंबर आपको बता रही हूँ, 3328 3393, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इशिता विश्वकर्मा जो है बॉलीवुड की सेंसेशनल सिंगिंग स्टार जो है यहाँ पे परफॉर्म करने वाली हैं, और बहुत सारा गरबा का म्यूजिक प्ले होने वाला है। तो अगर आप तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हैं इस 9th अक्टूबर को रिजेंसी हॉल में। रेडियो 11 ए टू जी इवेंट्स आप लोगों के लिए ये लेकर आए हैं। सो हम फ्री कपल पासेस जो है वो दे रहे हैं, और मैं आपसे पूछ रही थी कि आप ये कपल पास क्यों डिजर्व करते हो।
1: हे सिमरन, हाय, हाउ आर यू? काफी दिनों के बाद में बात हो रही है।
0: कल ही तो वॉइस नोट भेजा यार।
1: पासेस डिजर्व करते हैं क्योंकि यार दांडिया गरबा खेल के बहुत टाइम हो गया कि हम यहाँ होते हैं, तो हर साल एक आधा दिन जाने के लिए मिलता है, तो यही अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जाके एंजॉय कर पाए गरबा या कोई भी फेस्टिवल। तो हम तो डिजर्व करते हैं क्योंकि वी आर जस्ट डाई हार्ड फैन ऑफ गरबा एंड डांडिया, वी जस्ट लाइक टू एंजॉय। सो प्लीज ये कपल पासेस मुझे दे दो।
0: आपकी विश ग्रहण करते हैं यार। लो जी, बधाइयां मिठाइयां दे, बहुत सारे पटाखे। लेकिन बाकी लोग परेशान मत होना, अगले घंटे एक और कपल पास देने वाली हूँ मैं।

को आप रोज पहनते हैं उसका नाम एक्चुअल में एक अरेबिक वर्ड कार्टून से आया है। इसका मतलब होता है फाइन टेक्सटाइल। बात हो रही है कॉटन की, जो सिर्फ व्हाइट नहीं बल्कि बिना किसी आर्टिफिशियल कलर्स के ब्राउन, रेड और ग्रीन जैसे वाइब्रेंट शेड में भी नेचर में पाया जाता है। इस वर्सेटाइल प्लांट का अपना एक अलग ही नो वेस्ट रूल है, मतलब कॉटन से कपड़े बनते हैं और इसके बचे हुए सीड से ऑयल बनता है। और कॉटन ही है जो दुनिया भर में 250 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरों के और खुद के कपड़ों की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। हैप्पी वर्ल्ड कॉटन डे।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
2: Now? We still have time for the festive season.
1: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोया लुकास। जोया लुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। और एक बार फिर से आपके पास मौका है, क्योंकि मेरे पास एक और कपल पास है डांडिया नाइट का। अगर आप ये जीतना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए टिकट जीतने के लिए। इस 9th October को रिजेंसी हॉल में ए हालो धूम में हम बहुत सारे डांडिया वाले गाने चलाने वाले हैं, डांडिया करने वाले हैं और बहुत सारा मजा आने वाला है। रेडियो ऑलिवन A to Z इवेंट्स आप लोगों के लिए ये लेकर आए हैं। सो आप सबसे पहले तो टिकट्स बुक कर लीजिए। अगर आपका बड़ा ग्रुप है, लोग हैं आपके आसपास और आप वेट नहीं करना चाहते कि यार आप टिकट जीते ना जीते, लेकिन ये टिकट यू नो ये इवेंट मिस नहीं होना चाहिए, तो स्नूनू सिटी पे जाके आप टिकट्स बुक कर लीजिए। ए हालो धूम लिखा होगा वहां पे, तो आप बुक कर लीजिए। एंड अब मेरे पास एक कपल पास है, अगर आप वो जीतना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, क्विकली आप बस मुझे 15 से 30 सेकंड के बीच में बताइए कि आप ये फ्री कपल पास डांडिया नाइट का क्यों डिजर्व करते हो। ठीक है, 3311063 पर बस 15 से 30 सेकंड में। इससे ज्यादा लंबी कहानी नहीं सुनाना मुझे। जी बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Mehmani Kapoor, Radio Olive, you're with us.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
3: Radio Olive, I'm number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हां जी शुक्रिया मेहरबानी करम, तो मुझे हमारे एक लकी विनर बोलने वाले हैं जिनको मैं डांडिया का एक कपल पास देने वाली हूँ बस थोड़ी देर।

0: ये डांडिया नाइट जो है वो होने वाली है ए हालो धूम के नाम से इस 9th ऑफ अक्टूबर को रिजेंसी हॉल में। मेक श्योर आप स्नूनू सिटी पे जाके टिकट्स बुक कर लीजिए। एक कपल पास मेरे पास भी है। रेडियो वाले में ए टू सी इवेंट्स आप लोगों के लिए ये डांडिया नाइट लेके आए हैं। सो आपको मुझे 15-30 सेकंड के बीच में ये बताना है कि आप ये कपल पास क्यों डिजर्व करते हैं डांडिया का। फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 15-30 सेकंड में बताइए कि आप ये क्यों डिजर्व करते हैं। 3311063 पर वापस लौट के विनर का नाम बताती हूँ।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में फास्ट इजी और रिलायबल विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: अगर जिंदगी में आ गए तो
1: तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले?
0: इनको ये, मैं इनको ना मिलूं, लेकिन आपको जो है कपल पास जरूर मिलने वाला है इस डांडिया नाइट का, जो कि इस 9th अक्टूबर को रिजेंसी हॉल में होने वाला है। स्नू सिटी पे जाके आप अपनी टिकट जो है बुक कर सकते हैं। रेडियो ऑलिवन ए टू जी इवेंट्स आप लोगों के लिए ये डांडिया नाइट लेके आया है, ए हालो धूम के नाम से। सो या मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे रीजन दीजिए कि आप ये कपल पास फ्री में आपको क्यों मिलना चाहिए।
2: हे सिमरन, गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग जी।
2: मैं ये टिकट लेना चाहूंगा। मैं और मेरी वाइफ दो अकेले रहते हैं यहाँ पे, बाकी बच्चे अभी पढ़ने गए हैं, कुछ अपनी लाइफ में सेट हो रहे हैं। हम दो ही हैं, तो हमारे लिए एक आउटिंग हो जाएगी अच्छी सी।
0: ओके,
2: थैंक यू। और मुझे यहाँ पे 3 दशक हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी भावनाएं क्या रहेंगी।
0: लो जी, आपकी भावनाओं की पूरी रिस्पेक्ट है सर। बधाइयां बधाइयां, दे बहुत सारे पटाखे आपको, एक कपल पास, मुबारक हो। सिया।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: क्या?
1: Oh my God, it's okay, यार. I know. 7:47 स्टूडियो की घड़ी दे हो गए ने. और अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि नेम गेम खेलने वाले हैं यार हम. कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे ले लूं तो मैं अभी के अभी आपका नाम रेडियो पे ले लेती हूं. बस उसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है. बस एक परेशानी है कि मुझे आपका नाम नहीं पता. तो आपको मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करना होगा. मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063. जी हाँ, 3311063. इस नंबर पर आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना नाम लिख के भेजना है. अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे मेरे सिस्टम पे देखेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, तो वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ. चलिए नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ. महेंद्र, मानव, समीर, श्वेता चावला, अफरोज, इब्राहिम, यूसुफ, दियार, मोहम्मद शाहिद, राहुल, मनस्वी, श्रवण, अल्ताफ, चिराग, उमेर, सना, विश, तनवीर, साजिद, मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. शाहबाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अली जी, थैंक यू सो मच. जुल्फिकार जी, थैंक यू सो मच. सरफराज जी, थैंक यू सो मच. बिंदास सिमरन किसी ने लिख के भेजा, थैंक यू सो मच. दोस्त आप अपना नाम ले दो ना यार. भारत जी, थैंक यू सो मच. मेरी तारीफों के लिए आपके पास पूरे 4 घंटे होते हैं यार. अजरुद्दीन जी, थैंक यू सो मच. महबूब जी, थैंक यू सो मच. सभ्यसाची, रुद्रा जी, थैंक यू सो मच. सैमन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. किसी ने सोना बाबू लिखा, लाइक सीरियसली यार. फजल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. माई नेम इज निजामुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया सर. संदीप जी, थैंक यू सो मच. अलीशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. कामरान जी, थैंक यू सो मच. भरत साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. अगला गाना शुरू होने वाला है. क्या नाम है? सुभश्याम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया. फजल जी, थैंक यू सो मच. सरताज जी, थैंक यू सो मच. एंड नीलू जी, सादिक जी, थैंक यू सो मच. सरफराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब तो थैंक यू बोलना पड़ेगा. अब तो अपना फेवरेट वाला इमोजी आपको भेजना पड़ेगा यार.

0: 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
3: Radio Olive, I'm a number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just be

0: जी आज का रियलिटी चेक जो है ना वो आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करने वाला है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: जरूरी है मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और कभी कभी जिंदगी में हमको लगता है कि हम हार ही रहे हैं यार, जो चीज कर रहे हैं वो हो ही नहीं रही है, लेकिन आप फिर से ट्राई कर रहे हो, फिर से ट्राई कर रहे हो। तो ये भी तो कहते हैं कि जीत है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। बिल्कुल। सो ये मत सोचो कि तुम हार गए और नहीं सक्सेसफुल हो रहे हो, ये एक जीत है कि तुम हार मान नहीं रहे हो। तो जब इंसान हार नहीं ना मानता, वो एक्सेप्ट नहीं ना करता हार को और ट्राई करता रहता है जीतने की, तो वो जीत है अपने आप में। और वो जो जीत आपको चाहिए फिर वो आपको जरूर मिल जाती है, क्योंकि ऊपर वाला फिर आपको वो झोली में डाल के देता है, क्योंकि उसको पता है कि आपको ये चीज चाहिए और इस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो और आप डिजर्व करते हो। आज के लिए इतनी मोटिवेशन काफी है या फिर और? अरे बाकी के लिए तो फिर पैसे वैसे लगेंगे यार। जस्ट किडिंग यार, खुश रहो अपनी लाइफ में और हारना जीतना ये जिंदगी का पार्ट है, लेकिन जो चीज आपको चाहिए लगे रहो, मिल जाएगी आपको जरूर।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

हां जी मैं कह जी सुनियो किदा दे की हाल चाल सत श्री अकाल यार यू नो रेडियो वाले का सोशल मीडिया फॉलो किया करो, इंस्टाग्राम फॉलो किया करो, फेसबुक फॉलो किया करो, क्योंकि यहां पर आपका फायदा है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो हैं अगर आप रेडियो पे नहीं जीते तो फिर आप सोशल मीडिया पे जीत जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये गरबा, ये डांडिया, चाहे जो भी नाम ले लो, ये होने वाला है अपने कतर में इस 9th अक्टूबर को, और जिसमें इशिता विश्वकर्मा जो है वो परफॉर्म करने वाली है। सो मेक श्योर कि यू नो गरबा की बीट्स पर नाचने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपकी टिकट्स भी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फील लेते रह जाएं और बोलेंगे यार बाद में बुक कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, फिर टिकट्स, फिर क्या होता है कि फिर टिकट्स बिक जाती हैं, ठीक है। सो रिजेंसी हॉल में इस 9th ऑफ अक्टूबर को अगर आप ए हालो धूम के लिए आना चाहते हैं तो स्नूनू सिटी में जाके आप टिकट बुक कर लीजिए। वहां पे ए हालो धूम लिखा होगा तो डांडिया की टिकट वहीं से बुक होने वाली है। क्विकली कर लीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गोर, कहते रहिए जियो बिंदास।

Olive Bay. Story of the day. Story of the day. क्या आपको पता है जिस कंफर्टेबल फैब्रिक को आप रोज पहनते हैं उसका नाम एक्चुअल में एक अरेबिक वर्ड कार्टून से आया है। इसका मतलब होता है फाइन टेक्सटाइल। बात हो रही है कॉटन की, जो सिर्फ व्हाइट नहीं बल्कि बिना किसी आर्टिफिशियल कलर्स के ब्राउन, रेड और ग्रीन जैसे वाइब्रेंट शेड में भी नेचर में पाया जाता है। इस वर्सेटाइल प्लांट का अपना एक अलग ही नो वेस्ट रूल है, मतलब कॉटन से कपड़े बनते हैं और इसके बचे हुए सीड से ऑयल बनता है। और कॉटन ही है जो दुनिया भर में 250 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरों के और खुद के कपड़ों की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। हैप्पी वर्ल्ड कॉटन डे।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: की वायरस से काफी अंडररेटेड गाना सुन रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लेकिन जाने से वैरिश हो गया आखिरी दो गाने।
1: अब ना जग की है परवाह कोई।
0: अच्छा सुन,
1: I love you.
0: बाद में आई लव यू टू 100 किलो होने चाहिए मैसेज में, ठीक है। चलो अब कल मैं आपसे मिलती हूँ, कल अकेली नहीं आऊंगी, कल वीकेंड को साथ में लेके आऊंगी, तो मिलके फन करेंगे अपन कल शाम को 5 बजे। ओवरथिंकिंग मत करना, ठीक है, खाते पीते रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बे

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: चांदनी रातें।
1: Uno, dos, tres, cuatro.